साक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, आपकी अपनी रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। और इट हैपेंस में आज हम आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं और आप ही के साथ कुछ ढेर सारी बातें और गुफ्तगु भी कर रहे हैं। वैसे इट हैपेंस में आज इस वक्त बात करूंगी आपसे मेकअप डिटॉक्स की। जी हाँ, मेकअप डिटॉक्सिफिकेशन ये एक टर्म भाई मार्केट में आया है, तो सोचा आपके साथ बात लिया जाए, इस पर बात कर ली जाए। क्या है ये मेकअप डिटॉक्सिफिकेशन? मतलब देखिए भाई, मेकअप से खुद को डिटॉक्स करना है ना, यही है मेकअप डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि आज हम मेकअप के यानी आर्टिफिशियल ब्यूटी के इतने आदि हो चुके हैं कि एक दिन हमारा चेहरा कहता है भाई हमें छोड़ दो, स्किन को हम अपने थोड़ा रिलीज करें, थोड़ा आराम दें, थोड़ा उसकी केयर करें इस मेकअप से। यानी कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप अपने फेस पर मेकअप अप्लाई ना करें, है ना, और उसे यूं ही छोड़ें, उसे क्लीन छोड़ें, ताकि आप जो है वो अपनी स्किन को थोड़ा आराम दे पाए। देखिए, कितना भी कंपनीज कह लें भाई नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। नेचुरल वही होता है जो आप अपने घर के प्रोडक्ट्स में, अपने किचन के प्रोडक्ट से आप उपटन बनाते हैं, या आप कोई क्रीम बनाते हैं, या आप लिप बाम बनाते हैं, अपने आप अगर किचन से आप बनाते हैं और उसके सोर्सेज नेचुरल रहते हैं तो ही वो नेचुरल है। वरना उसकी प्योरिटी को बनाए रखने के लिए कंपनीज कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर उसमें अप्लाई करती हैं, डालती हैं, ताकि वो जो है लंबे समय तक बचा रह सके, टिकाऊ रह सके। भाई 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो वारंटी रहती है ब्यूटी किट्स की, उसका कुछ तो रीजन होता होगा ना। तो कितना भी आप कह लें कि कोई चीज़ नेचुरल है, बट वो नेचुरल तभी होती है जब आप अपने हाथ से उसे बनाते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आप उसे नहीं बचा पाते, वो खराब होने लगती है ना, तो उसकी एक डेडलाइन होती है। लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट जो आप बाहर से लाते हैं वो 2 साल, 6 महीने या 1 साल बहुत आराम से चलते हैं। तो इस बात को समझिए और इससे ये समझिए कि भाई आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल सही कहती है कि उसे थोड़ा सा आप आराम दें। तो कम से कम एक दिन, मैं तो कहती हूँ हमेशा आप कम से कम ही ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करें, लेकिन फिर भी अगर नीड है, ज़रूरी है, तो भी कम से कम एक दिन आप खुद को ये जो मेकअप है इससे दूर रखें और अपनी स्किन का ख्याल रखें। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए। एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, आपके साथ है सताक्षी।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेनी पर और आपके साथ सताक्षी है। जी हाँ, सताक्षी के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं कुछ बेहतरीन मॉर्निंग ट्रैक्स और इस सुबह की कुछ बेहतरीन बातें भी। सो भाई, क्या हाल है किचन का? जी हाँ, किचन में पहुंच गए। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी ना आपसे कि यार वो प्रोडक्ट जो आप खुद बनाते हैं आपकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया होते हैं और सही मायनों में नेचुरल होते हैं। तो चलिए, आज आपके किचन में आपको लेकर चलती हूँ और आपको नेचुरली एक लिप बाम बनाना सिखाते हैं। जी हाँ, चलिए भाई, सर्दियों में तो खासकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस लिप बाम को ट्राई करें और गर्मियों में भी आप इसे फ्रीज करके रखें और आपके लिए बड़ा मज़ेदार रहने वाला है। लिप बाम जब बात आती है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कलर भी उसमें हो, है ना। तो भाई, बीट रूट है आसपास? नहीं है तो मार्केट से ले आइए। और प्योर घी, देशी घी जिसे हम कहते हैं, प्योर घी आप अगर किचन में है तो बढ़िया है, नहीं है तो उसे भी ले आइए। और अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो वैसलीन आती है ना, उसे आप ले लें थोड़ा सा और उसमें बीट रूट को ग्रेट करेंगे तो उसका रस आ जाता है, यानी बीट रूट जूस भी अगर आप पीते हैं तो बीट रूट जूस का कुछ हिस्सा आप निकाल लें और उसे एक बॉटल में डाल के और उसमें देशी घी डाल के और आप उसे अगर फ्रीज कर देते हैं सिर्फ इतना ही करके, और अगर आप कोकोनट ऑयल थोड़ा सा इसमें मिला दें तो और भी बढ़िया है। आप देखेंगे कि आपके लिप पर ये इतना बढ़िया कलर देगा और इतना बढ़िया असर करेगा कि जो लिप फटने की प्रॉब्लम होती है या सूखने की प्रॉब्लम होती है, ड्राई हो जाते हैं आपके लिप्स, बहुत गजब का असर देता है। और देखिए, मैंने कहा ना कोई केमिकल नहीं है, है ना। तो सिर्फ प्योर घी, नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल और बीट रूट का जूस, बस इसे फ्रीज रखिए, अप्लाई कीजिए अपने क्लिप्स पे और मजे लीजिए। हाँ, तो चलिए आपको फिलहाल आगे लेकर चलते हैं, एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रिस्पानी 1701 एम पर।

थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हुई बीट रूट का लिप बाम बनाने की, तो जब बीट रूट का लिप बाम बना ही रहे हैं तो मैं ये कह रही थी कि बीट रूट जूस भी निकाल ही लीजिए। गजब के बेनिफिट्स हैं यार इसके, मतलब मुझे लगता है अगर आप बीट रूट जूस पीते हैं है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी बॉडी को बड़ा हेल्दी रखता है, डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी डिटॉक्स करनी है अगर आपको, तो ये बहुत ही बढ़िया ड्रिंक है। उसके अलावा आपके जो हीमोग्लोबिन है उसके लेवल को ये अप करता है। अगर आप भाई साहब 1 महीना लग के पी लें आप बीट रूट जूस, तो आपकी हीमोग्लोबिन बहुत बढ़िया हो जाती है। जितना भी डिफिशेंसी है ना हीमोग्लोबिन का बॉडी में, जिस तरह का भी, वो सारा दूर होता है, ताकत आती है। जिन लोगों को चक्कर आने की प्रॉब्लम है, फेंट हो जाते हैं या बीपी लो रहता है, उनको ये बड़ा फायदा करता है। तो कुल मिलाकर इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। और अगर सर्दी का मौसम हो तो मैं ये कहती हूँ कि इस जूस को गर्म चाय की तरह आप गर्म करके बॉईल करके पिए, हाँ ठंडा पीने की जरूरत नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी गर्म भी रहेगी, आपको ये बहुत अच्छा फील कराएगा और एक सूप की तरह से ये आपके लिए वर्क करेगा, है ना। इसमें आप आंवला डाल लीजिए और फायदे ही फायदे हो जाएंगे इसके, तो आपके स्किन को, आपके बालों को, आपकी आंखों को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हर तरह से ये इम्प्रूव ही करने वाला है। तो ट्राई कीजिए और सदाक्षी के साथ सुनते रहिए ठापमेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

क्या बना भैया आज ब्रेकफास्ट में, क्या बना आज, क्या इतना सोचने के बाद क्या बनाया? देखिए बहुत सारी रेसिपीज तो मैंने आपके साथ बांटी हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि खाने के साथ साथ हम अपने आप को हाइड्रेट रखने पर भी फोकस करें। मैं अक्सर देखती हूँ कि हम खाने पर तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन जब बात हाइड्रेशन की आती है, पानी पीने की आती है, तो हम अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ भागते हैं। कोल्ड ड्रिंक आपको हाइड्रेट करने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। हाइड्रेट रहने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पानी हेल्प कर सकता है, पानी, इलेक्ट्रोल वाटर या फिर कोकोनट वाटर, ये जो लेमन वाटर है ना। हाइड्रेट आपको प्योरली जो वाटर है जिसमें, वो चीजें रखती हैं। ये कोल्ड ड्रिंक हो गई, शेक्स हो गए, ये आपको हाइड्रेट रखने का काम नहीं करते हैं। तो ख्याल रखिए, जूस आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ग्लास पिएंगे ना। बेसिक जो बॉडी की नीड है आपके हाइड्रेशन में, वो प्ले करता है वाटर। इसलिए पानी पीने का खास ख्याल रखिए। आप पानी के फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं, आप लेमन वाटर लीजिए, आप जीरा वाटर लीजिए, आप डिफरेंट फॉर्म में, आप जैसे भी है ना, आप पानी के फॉर्म्स चेंज कीजिए, लेकिन आपको पानी पीना जरूर है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए और यूं ही सुनते रहिए। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप मेरे साथ जी हाँ इट हैपेंस सताक्षी के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर और इट हैपेंस में आपके साथ हम कर रहे हैं आपकी जिंदगी की और हमारी जिंदगी की कुछ खास बातें इस वक्त आपसे। वैसे देखा जाए तो जिंदगी के कई रंग हैं और हर एक रंग मुझे लगता है बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, कुछ रंग ऐसे हैं जिंदगी के जो आपको खूबसूरत लगते हैं और कुछ रंग ऐसे हैं जिनसे आप दूर भागते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के हिसाब से हमेशा एक चीज ये देखी है कि वो रंग जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, असल में वो रंग हमें जो कलर जिंदगी के अच्छे लगते हैं ना, उनसे भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। बस ये बात अलग है कि जब जिंदगी में वो रंग आते हैं जो हमें पसंद नहीं है, उस वक्त हमें वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो लाइफ से गुजरते हैं, थोड़ा टाइम बीतता है, आप सेटल डाउन होते हैं, आपको लगता है कि यार जिंदगी में जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये नहीं हुआ होता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। सो यस, लाइफ का हर एक फेज जो है वो हम इंजॉय तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन लाइफ का हर एक फेज समझने की जरूरत है। और कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप चीजों को सेटल डाउन कर देगा, है ना। तो कुछ चीज़ों के लिए ऊपर वाले पर डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, एक विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई संभाल लेना, अब मेरे हाथ में नहीं है, बस इतना कह के छोड़ दीजिए। और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, जी आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी। आइए आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ।

और फ्रेंड्स, ये था आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और साथ, एंड आई रियली होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो कुछ खास बातें तो होंगी ही, किससे भी होंगे, और बहुत सारे जज्बात हमारे और आपके बिखरेंगे कल एक बार फिर से इसी सफर इट हैपेंस में। आज के सफर से अब वक्त है इजाजत लेने का, विदा लेने का। सो चलिए, मैं चलती हूँ, आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज
4: ही। क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। Remember, the number is 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Permanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready for the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: मुंडा साधु।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता. लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को. फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.

0: सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026 शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स शॉपिंग राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज और हाँ शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स तरुण रनिगा रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स एंड वेट रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले सबसे बेस्ट पार्ट एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए सैटरडे जून 13 ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शन पर डोंट मिस इट
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ अपने बिटकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
5: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
4: ऐसा क्या खास है वहाँ
5: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
4: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

0: कंटीन्यूअस फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतला तो कमाई करो, तो हर डे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जा रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू ब्रिस्बानी.com या मेला कार्निवल.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 35 पर। याद रहे 04006444 35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready for the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just enough.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम आ रही हो, मैं जा रहा हूं। लगता रूम में रह गया।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Ek ladki thi deewani si. Ek ladke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke, sharma ke. गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

सो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। तो दोस्तों आ गया है, मतलब मिड वीक आ गया है और धीरे धीरे हम जा रहे हैं उस और जो कि दिशा से ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को पता है समझदार को इशारा काफी। एंड ऑफ कोर्स हम उस तरफ जाएंगे, लेकिन अगेन मिड वीक जो है वो थोड़ी सी डाइसी सा दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन आपको काम भी करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सुकून जो है उसकी जो है वो आहट महसूस होने लग जाती है। जो यहाँ काम करना होता है क्योंकि मंडे के बाद आता है और वेडनेसडे उन दिनों में से है जहाँ पर काफी प्रोडक्टिविटी आपको दिखानी होती है, जहाँ पर आपको अपने गोल्स के लिए काफी मेहनत करनी होती है। सो वही है, लेकिन उसके बाद जो बाकी के दो दिन है उसमें आपको थोड़ी थोड़ी राहत जो वो मिलनी शुरू होती है। मिडवीक है और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत होगी एक हेल्दी रिचुअल के साथ, विच इज डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। मतलब लंबी गहरी सांसें हम लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फिजिकली एंड मेंटली इस दुनिया की जद्दोजहद के लिए और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के लिए। सो आइए करते हैं। क्या बात, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अब इसे करके हम सीधा किस और जा रहे हैं, वेल ऑफ कोर्स प्रोग्राम को शुरू करने की ओर जा रहे हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ। सो जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो है कॉकटेल 2 का, जो कि नया नया आया है और 19 जून को मूवी रिलीज होने वाली है। सो 9 दिन बचे हैं और उससे पहले उसका एक और गाना ड्रॉप कर दिया गया। अभी तक जितने भी गाने आए हैं सब बहुत ही मजेदार हैं। लेट्स सी ये कैसा है, क्योंकि प्रीतम ने इसे बनाया है और हाडी संधू ने इसे गाया है।
1: Oh, looking where Punjabi hair.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब अगर बात की जाए मौसम की, क्योंकि आपको तो पता ही है प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, अब सबसे पहले जानेंगे मौसम के बारे में, फिर आपको बताएंगे आपकी फरमाइशों के बारे में, और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे अपने प्रोग्राम में आगे की ओर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले मौसम से शुरुआत होगी, क्योंकि आपको तो पता ही है मौसम कैसा बना हुआ है, बारिश आना। अब बारिश का अफसाना आपको पसंद है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन कितनी बारिश हुई आपके यहाँ पर जरूर मुझे बताइएगा, और क्या अभी रुकने का नाम लिया है या नहीं लिया है, बूंदाबांदी हो रही है या नहीं हो रही है, जरूर बताइएगा। अब जरा सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, जो कि 19 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, और वहीं अगर बात की जाए अभी के टेम्परेचर की तो वो 18.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको हो रहा है 19.4 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इसी के साथ यहां पर अगर बात की जाए एयर क्वालिटी की तो एयर क्वालिटी एकदम मजेदार है, और आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, और कल की अगर बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है विद 80% चांसेस ऑफ बारिश, मतलब 1 से 5 mm तक की बारिश हो सकती है, यानी कि 11 जून की मैं बात कर रही हूं, और यहां पर मुझे बारिश होती हुई नजर आ रही है 80%। वहीं अगर फ्राइडे की बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस के साथ 70% चांसेस हैं बारिश होने के। सो अगेन, जैसे मैंने कहा कि ये दिखाता है बट उसके बाद चेंजेस होने में वक्त भी नहीं लगाता है, मतलब चेंजेस करने में वक्त भी नहीं लगाता है, मतलब मौसम आपको दिखाएगा कि कल जो है वो 90% चांसेस है बारिश होने के, बट फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कहाँ है बारिश, बारिश कहाँ है, लेकिन कभी कभार इससे कम चांसेस दिखाता है लेकिन फिर भी बारिश जो है वो भर भर के हो जाती है। सो इट इज वेदर, मतलब जैसे मैंने कहा था थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जा सकती है, बट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी के साथ आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने बारिश में कुछ इन्जॉय किया, मतलब बारिश में जो करने वाली चीज़ें हैं जो आपके लिए खास हैं, लाइक मैं हमेशा कहती हूँ कुछ पढ़ना, कुछ सुनना, कुछ खाना, कुछ किया तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Fire ants, tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਅਰਨ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਐਮਟੀ ਡਰਿੰਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵਿਦ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: दोस्तों, पानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं, सीधा बात करते हैं आपकी फरमाइशों की। तब आपके वो चुनिंदा पसंदीदा और बहुत ही अजीज गानों की जो कि आप फरमाइश करते हो और हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं, मतलब आपकी फरमाइशें, लेकिन हमारे लिए तो आलम बन जाए। What are you waiting for? अगर आप लोग हिस्सा बनना चाहते हो, पार्ट लेना चाहते हो हमारे इस प्रोग्राम में अपनी फरमाइशों के साथ, रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स के साथ, तो आपको कैसे पहुंचाना है उन्हें हम तक, जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ, आपको अपना फोन उठाना है और आपको एक नंबर डायल करना है और वो नंबर है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए। और कभी अगर आप काम ना करो ना, काम चोरी करो, तो ये गाना अपनी मम्मी के सामने गा देना। जी हाँ, आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं अब आपको कुछ बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि नीवा शर्मा ये तो मजाक है, मतलब ये मजाक है, मैं आज तुम्हें बता रही हूँ ये मजाक है, पता नहीं तुमने इसे कहाँ देख लिया, कहाँ पढ़ लिया, कहाँ सुन लिया। वेल, और मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मेरा भाई ना सुन रहा हो। जी हाँ, बिकॉज आई हैव अ सिबलिंग एंड आई हैव अ ब्रदर, और वो इस बात को ना सुने जो मैं अब कहने वाली हूँ। सो जितनी भी मेरी फीमेल लिसनर्स है जिनके पास भाई है या जिनके भाई है जो कि लिटरली बहुत ही डिमांडिंग रहते हैं हमेशा, और वो हमेशा कहते रहते हैं कि बहन ये दिलवा देना, बहन वो दिलवा देना तो वो इसको ना सुने, लेकिन आप इसे जरूर सुनिएगा। स्टडीज में पता चला है कि स्पेंडिंग मनी ऑन योर ब्रदर ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस एंड जॉय। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा ठीक है, बस यहीं चुप हो जाओ, इससे पहले हमारे भाई सुन ले और वो हमें बोले अरे बहन तुम्हारे जॉय और हैप्पीनेस का कारण मैं बनना चाहती हूँ, चलो मुझे लेकर और मुझे शॉपिंग करवाओ। आई नो, आई हैव अ ब्रदर एंड आई कैन टेल कि ये चीज हो सकती है। सो बाइंग अ प्रेजेंट फॉर योर ब्रदर कुड मेक यू हैप्पियर देन ट्रीटिंग योर सेल्फ। या एग्जैक्टली, दैट इज द फनीएस्ट। मतलब ठीक है, अपने भाई के लिए अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपको अच्छा फील होता है, दैट इज वन थिंग, बट आपके भाई के लिए अगर आप जो चीज खरीदते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपको फील होता है rather than जब आप अपने लिए कुछ खरीदते हो। Well, I don't believe in that. मुझे लगता है कि ये चीज जो है वो गड़बड़ है, बट ये सच में प्रूव हुआ है और स्टडीज ऑन प्रो सोशल स्पेंडिंग में ये सजेस्ट करता है कि पीपल गेट अ बिगर मूड बूस्ट फ्रॉम स्पेंडिंग मनी ऑन लव्ड वंस दैट ऑन देमसेल्फ। मतलब खुद पे पैसे खर्चने से आपका मूड जो है वो इतना अच्छे से बूस्ट नहीं होगा जितना कि आपने भाई पर होगा। जी हाँ, अपने भाई पर होगा। अरे मेरा भाई ये ना सुन ले, दैट्स ऑल आई कैन से। आप मुझे बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप अपने भाई के लिए पैसे खर्च करते हो, जब आप अपने भाई के लिए चीजें लेते हो तो आपको बहुत मजा आता है, आपको ऐसा लगता है वाह वाह वाह वाह मैंने दुनिया में सबसे अच्छा काम कर लिया, कि आपको तब ऐसा फील होता है जब आप अपने लिए पैसा खर्च करते हो। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा मजाक कर रही हो क्या, ऑफकोर्स अपने ऊपर खर्चते हैं तभी होता है। आई डोंट नो ये कहाँ पे पब्लिश हुआ है, पब्लिश कहाँ हुआ है वो तो मुझे पता है, लेकिन किसने इसको स्टेटिस्टिक्स बनाया, इसका कौन से डाटाबेस से इसे उठाया गया है। भाई हमको अपने ऊपर पैसे खर्च के ही ज्यादा मजा आता है। हाँ ठीक है, भाई भी मजा आता है, बट अपने ऊपर ज्यादा आता है। जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। एंड अगेन, आप लोगों के भाई ने अगर ये सुन लिया हो और जो मेरे मेल लिसनर्स हैं उन्होंने अगर ये सुन लिया हो तो अपनी बहनों को जाके ये बता दीजिए कि बहन अगर तू खुशी चाहती है और वो भी बहुत ही बढ़िया से तरीके से तो चलो मुझे शॉपिंग करा दो, तुम्हें बहुत खुशी मिलने वाली है उससे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਉੱਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
1: ਬਦਨ ਪੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਨ ਤਮੰਨਾ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ।
2: Get ready Brisbane, aa raha hai saal 2026 ka sabse bada aur dhamakedar family festival, the Grand Multicultural Mela Carnival 2026. Shanivar 13 June ko apni family aur friends ke saath pahunchiye Subah Boda Park, Kurabi. Subah 10 baje se raat 8 baje tak experience the magic of unity, culture and pure celebration. Yahan honge Indonesiai aur Filipino groups ke shandar stage performances, international food stalls, shopping, rides aur bachcho ke liye dher sari fun activities. Aur haan, sham 6 baje se sajegi ek jadui sham, live music under the stars, Tarun Raniga, Ricky from Sydney aur Diman Roy lekar aa rahe hain 1.5 ghante ka dhamakedar Bollywood musical concert full of energy and classical hits. And wait, raat ko aasman chamkega ek unforgettable fireworks display. Sabse best part, entry is absolutely free including parking. To diary mein date note kar lijiye, Saturday June 13. Zyada jankari ke liye Raj Raj ko call kare 0402-651-045 par ya Farzana ko 0401-428-248 par. Log on to brisbane.com ya melacarnival.com aur click kare event sections par. Don't miss it.
1: Aaj kal tere mere pyar ke charche har zaban par, sabko maloom hai aur sabko khabar ho gayi.
3: Anuj, koi acha sa lawyer suggest karo na, aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: Oye Rahul, vire tere case da ki hoya?
6: Oh yara, main bahut worried haan. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
5: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
6: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, वहीं पर एक और बहुत ही अच्छी चीज हुई है जो कि यूके में हुई है। यूके जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गई है जहां पर बच्चे यानी कि चिल्ड्रन जो है अपनी नेकेड पिक्चर्स ना तो ले सकते हैं, ना सेव कर सकते हैं और ना ही किसी को सेंड कर सकते हैं। या आपने सही सुना, और ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर लॉ पास हुआ है। जी हाँ, अब उन्होंने कह दिया है, बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स हैं, फिर चाहे वो गूगल हो, फिर चाहे वो एप्पल हो, या जितने भी और टेक जाइंट्स हैं, उनको कह दिया गया है कि आप वॉलंटरीली अपने सॉफ्टवेयर्स में जो है वो चेंजेस कर दो, ताकि एज रिस्ट्रिक्शन यहां पर हर जगह सामने आए, ताकि कुछ भी ऐसा हो तो वहां पर जो है वो एज रिस्ट्रिक्शन आए, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसी कोई भी गड़बड़ जो है वो ना हो, जो ऑनलाइन प्रेडिटर्स जो हैं वो ऐसा कुछ भी गलत काम ना कर पाए। यू नो वट, दिस इज सो सो सो सो नीडेड. मतलब ये चीज सिर्फ यूके नहीं बल्कि हर एक कंट्री को करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेलिशियस चीजों का शिकार हो रहे हैं, इन ऑनलाइन मेलिशियस चीजों का शिकार बन रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे केसेस में यूके में ही जो सामने आए हैं स्टेटिस्टिक्स, उसमें 91% जो है वो शिकायतें उनमें यही था कि बच्चों जो उनकी इमेजेस जो है जो वायरल हो रही थी या यहां से वहां शेयर हो रही थी वो उन्होंने खुद ही ली थी. सो ऐसे में ना सिर्फ शेयरिंग और सेंडिंग बल्कि खुद लेना भी अलाउ नहीं होगा. सो एप्पल और गूगल और बहुत सारे और जो है जो टेक जॉइंट्स है उनको ये बता दिया गया है कि आपको हमारे साथ इसका साथ देना पड़ेगा. अभी तक उन्होंने कोई लॉ नहीं निकाला है, मतलब कोई पनिशमेंट जो है वो उन्हें नहीं देगी. जी हाँ, मतलब लॉ उन्होंने निकाला है लेकिन पनिशमेंट का लॉ कुछ नहीं निकाला है. लेकिन उन्होंने कह दिया है कि वॉलंटियरली आप खुद ही सुधर जाओ, खुद ही अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दो ताकि हमें आपको पनिश ना करना पड़े. और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जी हाँ उन्होंने कह दिया है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर हम लॉ भी निकालेंगे आपको पनिश करने के लिए. सो या चिल्ड्रन अंडर 16 और 18, जी हाँ 16 स्पेसिफिकली, यूके में ना वो नेकेड पिक्चर ले सकते हैं अभी के लिए और ना ही वो किसी को सेंड कर सकते हैं, ना ही वो सेव कर सकते हैं. एंड दिट्स इज सो सो सो गुड. आई यू नो वॉट, आई एडमायर दिस लॉ एंड आई एडमायर दिस डिसीजन. एंड मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारी कंट्रीज को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे जो हैं वो मिलिशियस चीजों का शिकार हो रहे हैं ऑनलाइन, उनकी तस्वीरें जो हैं और बाकी सारी चीजें भी. सो ऐसे में ऐसे लॉज की जरूरत हर एक कंट्री को है. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन काफी काफी बढ़िया है.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।

0: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ जब मिलन होता है म्यूजिक और पॉलिटिक्स का तो बहुत ही खतरनाक लव स्टोरी जनरेट होती है, पैदा होती है, उत्पन्न होती है। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा सुना सुना सा लग रहा है कुछ। वेल वेल वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द केटी पेरी, या द आइकन केटी पेरी एंड द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा जस्टिन ट्रूडो। जी हाँ, अब आप लोगों को तो पता ही, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्यार दिखाते हैं, इतना पीडीए करते हैं कि लोग अगर उनको नजरअंदाज करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते। सो या वी, हम भी नहीं कर पाए और हम भी इनके बारे में बात कर रहे हैं अब। सो केटी पेरी ने कह दिया है कि जस्टिन ट्रूडो इज द लव ऑफ हर लाइफ। या शी सेड इट, या शी सेड इट। एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ केटी पेरी, यू लाइक हर सॉन्ग्स व्हिच आई लाइक, सो अगेन वी विल फील हैप्पी फॉर हर। बट यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि एक चीज जो केटी पेरी ने स्पेशल की है, ऑफ कोर्स शी वाज इन रिलेशनशिप पहले भी ऑरलैंडो ब्लूम के साथ, एंड आई वुड से कि ऑरलैंडो ब्लूम से ज्यादा सुंदर इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा था उस वक्त। लेकिन यहां पर धीरे धीरे करके मूव ऑन किया उन्होंने एक दूसरे से। अब यहां पर केटी पेरी को फाइनली जो है वो प्यार हुआ है, दैट टू जस्टिन ट्रूडो के साथ। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आई फ्लाई सुपर हाई एंड लाइक टच द वेल्ड कॉस्मोस एंड समटाइम्स आई नीड टू बी एंकर्ड, सो टू हैव दैट एंकर फाइनली मेक्स मी फील रियली होल न्यू। ये केटी पेरी ने कहा है। और आपको पता है, मैंने हमेशा देखा है जब भी किसी को सच में प्यार हो जाता है ना, आई एम नॉट गोना से कि ये बहुत सही वाला प्यार है, एकदम सच्चा वाला प्यार है, हम तो यही दुआ करेंगे कि यही सच्चा वाला प्यार है, बट आगे की भी चीज हमें नहीं पता, फ्यूचर किसने देखा। लेकिन यहां पर जो मैंने देखा है, जब लोगों को वो सच में वो वाला प्यार हो जाता है ना, वो ये वाला सेंटेंस जरूर बोलते हैं कि वो कितने भी हाई एंड माइटी क्यों ना हो, जिससे उन्हें प्यार है वो उनको एंकर करता है, वो उनको ग्राउंडेड रखता है, एंड दैट इज व्हाई दे लव दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड केटी पेरी ने भी यही कहा है। सो आई वुड से कांग्रेचुलेशंस टू द कपल। और यहां पर ये क्वेश्चन और आंसर का जो सेशन हुआ है वो उस स्क्रीनिंग में हुआ जब पेरी ने कन्फेस किया ट्रूडो के लिए अपनी फीलिंग्स, लाइक शी सेड दैट शी ही इज द लव ऑफ हर लाइफ। एंड ये जो है वो कहाँ हुआ? जी हाँ, केटी पेरी जो है वो गई थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा जो है, जो कि लास्ट कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर थे, अब नहीं है वो उन्होंने सपोर्ट किया केटी पेरी को उनकी स्क्रीनिंग के लिए द लाइफ टाइम्स टूर लाइव फ्रॉम पेरिस। वहां पर जब उसकी स्क्रीनिंग के लिए वो पहुंची थी तो जस्टिन ट्रूडो ने उनको अकंपनी किया और वहां पर केटी पेरी ने अपने इश्क का ऐलान कर दिया। मैं तो हमेशा कहती हूँ मोहब्बत जो है, इश्क जो है, वो बहुत ही खूबसूरत इमोशन है, फीलिंग है। अगर किसी को ये फील करने का मौका मिलता है, जीने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल मत छोड़िए, बिकॉज मोहब्बत जब होती है किसी को तो वो ऐसे इमोशंस फील करता है जो इस दुनिया में उसे और कुछ भी नहीं करवा सकता। मतलब आप कितने भी अमीर हो जाओ, वो तब भी इमोशन आप फील नहीं करोगे जो प्यार में, जो मोहब्बत में जो इंसान होता है उसको फील होती है। सो ऑफकोर्स शी इज लिटरली ऑन क्लाउड 9 एंड वी आर हैप्पी फॉर हर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कपल। आई मीन शादी नहीं उनकी, बट या मतलब रिलेशनशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे इन दोनों का प्यार बना रहे। और यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: लास्ट मिनट पैकिंग पैनिक, लीविंग फॉर पेरिस टुमारो, बट बिफोर दैट

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: For aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani pe.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
12: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
11: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
12: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
11: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
13: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
14: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
13: अच्छा, वो क्या?
14: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
14: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
15: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
16: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
15: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
16: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
15: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
16: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
15: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
16: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
17: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात करते हैं, अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपके लिए कुछ नई खबर है. जी हाँ, अगर आप एप्पल यूजर हो तो मैं आपको बता दूं कि एप्पल में आपकी सीरी जो है वो इंटेलिजेंट होने वाली है. जी हाँ, सो एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी अब मिलकर काम करने वाले हैं और वो अब आपके फोन में आपकी कॉन्वर्सेशंस को, आपकी ओल्ड कॉन्वर्सेशंस को, आपकी पिक्चर्स को, हर चीज को एक्सेस कर सकती है और आपको आंसर भी कर सकती है जब आप उसे क्वेश्चन करोगे. और इनफैक्ट सीरी का अब अपना एक ऐप है जस्ट लाइक चैट जीपीटी, जहां पर आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो, जस्ट लाइक एन गुड AI टूल. मतलब सीरी बहुत वक्त से एप्पल में है, लेकिन वो इतनी स्मार्ट नहीं थी, या मेरी वाली सीरी भी स्मार्ट नहीं थी. सो ऑफकोर्स मुझे भी ये जानकर अच्छा लग रहा है, लेकिन वो एक्सेस कर सकती है मेरी फोटोज को, कॉन्वर्सेशन को. थोड़ा सा उस मामले में मुझे अजीबो गरीब सिचुएशन लग रही है, बट ओके, वी आर फाइन विद इट फॉर नाउ. इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी एप्पल की तरफ से आई हैं, और उसमें से एक और जो अपडेट है वो ये है कि वो जो लिक्विड ग्लास है जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, नाउ यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल. जी हाँ, आपने सही सुना, जो तीसरी अपडेट है वो है ऑफकोर्स पेरेंटल कंट्रोल. अब आप डिसाइड कर सकते हो आप अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हो. जी हाँ, आप कौन सी वेबसाइट्स उनको जो है वो एक्सेस करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो, आप वो भी डिसाइड कर सकते हो. सो पेरेंटल कंट्रोल के मामले में भी काफी सारी नई अपडेट्स जो है वो एप्पल ला रहा है. और यहां पर अब बच्चे जो है वो किसी भी तरह की नेकेड इमेजेस, गोर इमेजेस को एक्सेस भी इंटेलिजेंट हो गई है. लिक्विड ग्लास को आप कस्टमाइज कर सकते हो और पेरेंटल कंट्रोल जो है वो स्ट्रांग हो गया है. ये सारी की सारी अच्छी चीजें जो है वो एप्पल की नई अपडेट में आई है. जी हाँ, लेकिन यहां पर एक कैच है, ये हर जगह होगा एक्सेप्ट EU एंड चाइना. जो है वो डिफरेंट है. सो ऑफकोर्स वहां पे ये अभी के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर हर जगह हो रहा है. और आप अगर एप्पल यूजर हो या आपके बच्चे एप्पल गैजेट्स यूज कर सकते हैं तो आप उनको अब उनकी सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो. प्लस सीरी अब आपके बहुत सारे जवाब देने वाली है, वो भी कि इंटेलिजेंस के साथ. सो या इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड डील इन अ वे. सो यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब चलते हैं सीधा कहाँ की ओर? वेल ऑफ कोर्स अब चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया की तरफ चलेंगे और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले करेंगे। ऑल्दो खबरों की तरफ से मैं आपको नहीं विश्वास दिला सकती कि खबरें जो है वो अच्छी होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम खबरें जो है वो अच्छी नहीं होती। हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हम बात करेंगे वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, क्योंकि वॉर जो है वो अब और गड़बड़ होती हुई जा रही है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका में फिर से विवाद शुरू हो गया है। जी हाँ, फिर से शुरू हो गया। वो जो सीज फायर था वो सब कुछ धरा का धरा रह गया है। सो अगेन, यहां पर अब जरा बात करते हैं ईरान और अमेरिका से ही। अमेरिकी सेना ने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई पूरी की। सो एक अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका का था, ईरान ने उससे मार गिराया था। ऑल्दो जो लोग थे उसमें, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो सब जो है वो सेफ है, उनको सेफली जो है वो वहां से निकाल लिया गया था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर गिराया गया था उसकी वजह से फिर बहुत सारी सिचुएशन हो गई। अमेरिका ने सबसे पहले क्या कहा, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बुधवार को अपने ताजा बयान में कहा कि उसने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले के जवाब में कार्रवाई पूरी कर ली है। सेटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में सेना ने आत्मरक्षा के तहत 9 जून को ईरान के खिलाफ कार्रवाई पूरी कर ली। यह कार्रवाई कमांडर इन चीफ के निर्देश पर की गई। बयान में कहा गया कि अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी के लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के नजदीक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों और सर्विलेंस रडार के ठिकानों को निशाना बनाया। सोमवार को अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर ओमान के तट के पास गिराया गया था। इस हेलीकॉप्टर में सवार 2 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया था। दोस्तों, इसी के साथ यहां पर अब मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूं, जो कि मेरी तरफ से नहीं है बल्कि एक फरमाइशी गीत है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। जो गाना उन्होंने फरमाइश किया है वो है बहुत ही प्यारा, उसका नाम है चली चली रे पतंग देख चली रे। जी हाँ, अब यहां पर उन्होंने कहा बड़े स्टाइल से कि गाना तो मैं ये फरमाइश कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि आज मेरी पतंग उड़ नहीं पाएगी क्योंकि आज तो बारिश हो रही है, उड़ेगी कहां, लेकिन फिर भी ये गाना तो हम प्ले करेंगे क्योंकि फरमाइश है भाई। बाहर बारिश हो चाहे हवा चले या धूप हो, हम गाने पूरी तरह से प्ले करेंगे जो हमारे लिसनर्स हमें कहेंगे। सो थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: सीधे।
1: जी दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात करते हैं ईरान के। ईरान ने मध्य पूर्व स्थित इन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। जी हाँ, सो ईरान में युद्ध प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे खातम अल अनबिया मुख्यालय ने दक्षिणी ईरान के कुछ हिस्सों में अमेरिकी हमलों के एक घंटे बाद एक बयान जारी किया है। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक खातम अल अनबिया मुख्यालय ने अमेरिकी सेना के हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में स्थित कुछ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना की आक्रामकता के जवाब में क्षेत्र में स्थित कुछ अमेरिकी ठिकानों को ईरान की सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के बहादुर जवानों ने एक ताकतवर हमले के जरिए निशाना बनाया। इसके अलावा आईआरजीसी ने भी एक बयान जारी किया जिसमें बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले का दावा किया गया। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना ने सुबह 2:30 बजे बहरीन में अमेरिका के 5वें नौसैनिक बेड़े पर ड्रोन हमला किया। फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि आईआरजीसी ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया। आईआरजीसी ने कहा कि उसने जॉर्डन के अल अजराक में अमेरिकी हवाई अड्डे पर स्थित F-32 लड़ाकू जेट हैंगर और सेना कमान सहित 4 महत्वपूर्ण ठिकानों को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से निशाना बनाया है। आईआरजीसी ने अपने एक अन्य बयान में उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी ड्रोन को गिराने का दावा भी किया है।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
7: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
6: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
7: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। वेल, बवाल सिर्फ और सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका और लेबनान में नहीं है बल्कि यहां भी चल रहा है। अब जरा जानते हैं हुआ एग्जैक्टली क्या है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान सेना ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात डुरंड लाइन के पास कई प्रांतों में हवाई हमले किए। जबीहुल्ला मुजाहिद ने कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि कल रात पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और कुनार, खोस्त और पकितका प्रांतों में नागरिकों के घरों पर बमबारी की। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग मारे गए हैं, जबकि अन्य 14 महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने इन हमलों को मानवीय अपराध और आक्रामकता की कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। इन हमलों को लेकर अब तक पाकिस्तान की ओर से कोई बयान नहीं आया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ महीनों में तनाव बढ़ा है। बीबीसी पश्तो के मुताबिक पाकिस्तान ने इसी साल मार्च में एक सेंटर पर हमला किया था। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने इस हमले में कम से कम 269 लोगों की मौत की पुष्टि की थी और कहा था कि मरने वालों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।

0: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ जरा बात कर लेते हैं भारत की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लंबे कार्यकाल पर मलेशिया से लेकर मालदीव तक के राष्ट्रपति की टिप्पणी आई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके तौर पे सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता वो बन गए हैं। जी हाँ, वो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि इतने लंबे कार्यकाल तक रहे हैं। उन्होंने इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके ने एक्स पर लिखा कि मैं भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं। जी हाँ, वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद पर रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। जी हाँ, वहीं पीएम मोदी को मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी लिखा कि भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। बल बात तो है पते की। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी को आप हल्के में नहीं ले सकते। उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो सर्वोच्च सम्मान है हर एक कंट्री के। 30 से ज्यादा कंट्रीज के सर्वोच्च सम्मान उनके पास है। जी हाँ, मतलब उन्होंने पोकेमोन बॉल्स की तरह जो है उनको इकट्ठा किया हुआ है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट उनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा है। मतलब सोशल मीडिया पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। जी हाँ, एंड वो इकलौते ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो इस चीज को हासिल कर पाए हैं, इस उपाधि को हासिल कर पाए हैं। इमेजिन, जब अभी कुछ दिन पहले वो इटली पहुंचे थे तो इटली में जॉर्जिया मेलानी और उनकी तस्वीरों ने लिटरली इंटरनेट को ब्रेक कर दिया था। मिलियंस ऑफ मिलियंस लाइक एंड इन फैक्ट बहुत ही ज्यादा शेयर्स एंड कॉमेंट्स जो है उनको मिले थे। लोग जो है वो उनके और जॉर्जिया मेलानी को रोमांटिक एंगल जो है वो दे रहे थे और वो कह रहे थे कि क्या बात है भाई। मतलब ऑफ कोर्स इसके बारे में मैंने काफी बात की थी। मतलब थिंग इज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हर एक रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने की बात हो या सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की बात हो या फिर सबसे ज्यादा सर्वोच्च सम्मान की हो हर एक कंट्री से। सो या प्रधानमंत्री मोदी को कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: Hey, ooh, ah, hey, ooh, ah. Hey, ooh.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ माइकल जैक्सन डोमिनेट करते हैं म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट्स को, ये उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया है। जी हाँ, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री को डोमिनेट करना कोई माइकल जैक्सन से सीखे, मतलब ही इज अ लेजेंड। मतलब इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज द लेजेंडरी माइकल जैक्सन। लेकिन उनका गाना बिली जीन, जी हाँ, जो कि चार डेकेड बाद, आज से चार डेकेड पहले ये गाना जो है वो रिलीज हुआ था, और ये आज भी स्पॉटिफाई के ग्लोबल चार्ट्स में नंबर वन बना हुआ है। जी हाँ, फिर से डोमिनेट कर रहा है। आप लोग बोलोगे कि ओके ठीक है, अगर माइकल जैक्सन की बात हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। वेल वेल वेल, माइकल जैक्सन का बिली जीन जो है वो नंबर वन बना हुआ है स्पॉटिफाई के ग्लोबल चार्ट्स विद 5.51 मिलियन स्ट्रीम्स। जी हाँ, और ये जो लेजेंडरी ट्रैक है, इट हैज नाउ लॉग्ड 14 डेज एट द टॉप, मतलब 14 दिन से ये टॉप पे बना हुआ है। सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन। अब आप लोग बोलोगे कि माइकल जैक्सन है भाई, उनसे अगर ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया तो किससे किया, राइट? बट यहाँ पर सिर्फ माइकल जैक्सन का गाना ही नहीं, बल्कि उनकी मूवी, जी हाँ, उनकी म्यूजिकल बायोग्राफी, बायोग्राफिकल मूवी जो है वो भी नंबर वन बनी हुई है, और उसने ऑफिशियली $900 मिलियन जो है उसकी कलेक्शन को पार कर लिया है, और वो लाइन्स गेट की नंबर वन कलेक्टर मूवी बन चुकी है। सो माइकल का जो है वो गाना ही डोमिनेट नहीं कर रहा है म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट को, बल्कि उनकी पिक्चर जो है, उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी जो है वो भी ऑफिशियली बिकम, मतलब ऑफिशियली जो है वो बन गई है हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द लाइन्स गेट हिस्ट्री। जो लाइन्स गेट फिल्म है उनकी ये मूवी जो है वो बन गई है नंबर वन, और ये बायोपिक जो है इट हैज डोमिनेटेड ग्लोबल बॉक्स ऑफिस चार्ट सिंस इट्स April 24 रिलीज। सो अगर आपने माइकल की मूवी नहीं देखी है, और अगर आपको माइकल की लाइफ के बारे में जानना है, वो अनदेखे पहलू के बारे में जानना है, तो जरूर देखिएगा इसको। ये अभी भी आपके थिएटर्स में, आपके पास के थिएटर्स में जो है वो लगी हुई है। वेल ऑफकोर्स, इसका जो रन है उस हिसाब से ये ज्यादा दिन तक नहीं लगने वाली है, लेकिन April 24 से लगी हुई है। सो जून जो है वो शुरू हो गया है, जून का भी जो है वो आधा पीरियड खत्म होने वाला है। सो यू कैन इमेजिन कि माइकल जैक्सन के जो फैंस हैं वो इसको बिल्कुल जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो माइकल जैक्सन के फैन नहीं भी है वो भी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऑफकोर्स जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज थी इसको लेकर, और बहुत सारे लोग जो है वो इसके बैन के लिए कह रहे थे, लेकिन किसी ने इस चीज को अलाउ नहीं किया, ना कोर्ट ने, ना अथॉरिटीज ने। ये मूवी रिलीज हुई और अब देखिए इतनी बड़ी कलेक्शन कर चुकी है। सो यहां पर माइकल जैक्सन के गाने भी एकदम चार्ट बस्टर है, और उनकी मूवी भी चार्ट बस्टर है। ऑफकोर्स इट इज माइकल जैक्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। सो आप मुझे बताइए माइकल जैक्सन का फेवरेट ट्रैक कौन सा है, और क्या आपको भी माइकल जैक्सन टाइप का डांस आता है? अगर आता है तो जरूर बताइएगा हमें। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करें प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438, या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाने का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओल्ड इज गोल्ड की, मतलब पुराने गाने, पुरानी बातें, पुराने किस्से, पुराने तराने। जी हाँ, ये सब होंगे और साथ में होगा आपका साथ, ऑफकोर्स पुराने गानों के साथ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से अपनी फरमाइश जो कि पुराने गानों से रिलेटेड है भेज दीजिए हमें, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम। और जो पहला गाना इस सेगमेंट को शुरू करने के लिए मैं आपके लिए प्ले करूंगी, वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये गाना जो है, इट्स वन ऑफ द क्लासिक सॉन्ग्स, और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर जी ने गाया है। सो शुरू करते हैं अपलम चपलम से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बताते हैं वो किस्सा जिसने बेसिकली बेसिकली अमिताभ बच्चन की किस्मत बदल दी। जी हाँ, तो किस्सा कुछ ऐसे शुरू होता है कि निर्देशक चंद्रा बरोट, जो कि मनोज कुमार के असिस्टेंट रह चुके थे, जब वो निर्देशक बनकर अपनी पहली फिल्म लेकर आए डॉन, तो डॉन की स्क्रीनिंग, प्राइवेट स्क्रीनिंग जो है वो मनोज कुमार के लिए रखी गई। जी हाँ, और फर्स ये किस्सा मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन का ही है। वो सलाह जो मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन को दी और साथ में निर्देशक चंद्रा बरोट को भी दी। जी हाँ, जब डॉन की प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई मनोज कुमार के लिए, तो मनोज कुमार ने कहा कि मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही सही फिल्म है, बहुत ही मजेदार फिल्म है, बस इसमें एक चटपटा सा मजेदार सा गाना हो जाए तो लोग जो है इसमें फन भी कर पाएंगे, इसके साथ बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है ये एलिमेंट इस मूवी को बहुत ही ऊंचे शिखर पर ले जाएगा। बस फिर क्या था, तब मनोज कुमार की ये बात सुनके फटाफट चंद्रा बरोट जो है इस गाने को डिसाइड करते हैं, और वो गाना होता है कई के पान बनारस वाला। जी हाँ, तुड़ुम। जी हाँ, कई के पान बनारस वाला। अब आप लोगों को तो बताइए ये खाना कितना ज्यादा खास है, मतलब बनारस, बनारस के पान की बात हो या अमिताभ बच्चन के वो जबरदस्त जेस्चर्स की एक्सप्रेशन की बात हो, मतलब ये गाना इतना ज्यादा हिट हो गया, प्लस जितने भी लोग जो हैं जो बनारस के पान का जो है वो जिक्र करते थकते नहीं थे, और वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि हाईलाइट जो है वो बनारस का पान जो है वो रहा है हमेशा से, तो उसको यहाँ पर इस्तेमाल करके उस एलिमेंट को इस मूवी में लाकर इस गाने के तौर पर उन्होंने इस मूवी को एकदम खतरनाक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जी हाँ, बस फिर करा इसको करते ही जब मूवी रिलीज हुई तो लोगों ने इसके साथ इतना ज्यादा रिलेट किया, इतना ज्यादा पसंद किया, जब ये गाना आया थिएटर पे तो लोग अपनी सीट से उठकर डांस करने लगे, नाचने लगे और बहुत ही मजे करने लगे। उन्होंने इस गाने को बहुत पसंद किया और ये वजह थी कि डॉन को भी उन्होंने बहुत ज्यादा पसंद किया, और इस पिक्चर ने, इस गाने ने, जो कि मनोज कुमार की सलाह के बाद आया था, उसने अमिताभ बच्चन की सक्सेस को एक नई ऊंचाई पर ला दिया। इसीलिए अमिताभ बच्चन मनोज कुमार की बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। जी हाँ, उन्होंने हमेशा मनोज कुमार के साथ सलाह मशवरा किया है क्योंकि वो मानते थे कि उनकी सलाह जो है वो बहुत ही अच्छी होती थी, क्योंकि मनोज कुमार ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर थे बल्कि एक अच्छे डायरेक्टर और फिल्म मेकर भी रहे हैं। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मूड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन के कुछ खास खबरों के साथ। पिंक रोशनी से जगमगाएगा विक्टोरिया ब्रिज, ब्रिस्बेन वासियों के लिए एक बेहद खूबसूरत खबर। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल यानी ब्रिस्बेन फेस्टिवल के प्रोग्राम की पहली झलक आज यानी कि 10 जून को रिलीज कर दी गई है। वहीं पुर्तगाल नेशनल डे पर सिटी हॉल होगा लाल हरा। सिर्फ विक्टोरिया ब्रिज ही नहीं, आज पुर्तगाल के नेशनल डे के मौके पर ब्रिस्बेन सिटी हॉल को लाल और हरी रोशनी से सजाया जाएगा। ये रोशनी क्वींसलैंड में रहने वाले पुर्तगाली समुदाय को योगदान और हमारी मिलीजुली संस्कृति को सलाम करने के लिए की जा रही है। वहीं साउथ बैंक बनेगा फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल लाइव साइट। फुटबॉल फैंस के लिए ब्रिस्बेन की सबसे बड़ी खुशखबरी, साउथ बैंक को इस साल के फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल लाइव साइट घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान साउथ बैंक पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। इसी के साथ खराब मौसम के चलते डूमबेन रेस रद्द। ब्रिस्बेन रेसिंग क्लब जाने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट है। शहर में हो रही लगातार खराब बारिश के कारण आज होने वाली रेस को पहले कल के लिए टाल दिया गया था, लेकिन आज ट्रैक के निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने इसे पूरी तरह रद्द कर दिया है। वहीं मज और माना ने जीता की टू साउथ बैंक। जी हां, ब्रिस्बेन के लोकल परिवार मज और माना ने साउथ बैंक लोकल गाइड्स का बड़ा मुकाबला जीत लिया है। उन्हें की टू साउथ बैंक से नवाजा गया है जिसकी कीमत $14,000 से भी ज्यादा है। वहीं इस संडे मैच के चलते ट्रैफिक और रोड क्लोजर का रखें ध्यान। जी हां, इस रविवार 14 जून को होने वाले बड़े एफ

अब जरा चलते हैं भारत की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। सबसे पहले पीएम मोदी ने बनाया नया इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं मौसम विभाग का अलर्ट, केरल में भारी बारिश। मौसम विभाग आईएमडी ने केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहां मॉनसून पूरी तरह एक्टिव है और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। इसी के साथ उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी। एक तरफ जहां साउथ में बारिश हो रही है, वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सूरज आग उगल रहा है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में आज भी खतरनाक हीट वेव यानी लू चलने की चेतावनी दी है। वहीं वाराणसी बना इंटरनेशनल ट्रैवल का नया हब। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को इंटरनेशनल यात्रियों के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर चुन लिया गया है। अब वाराणसी एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए कागजी कार्रवाई और चेकिंग बहुत आसान और फास्ट हो जाएगी। इसी के साथ डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर सरकार सख्त। देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन स्कैम्स को रोकने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आज एक बड़ी ओपन हाउस मीटिंग कर रहा है। वहीं मणिपुर से आई राहत की खबर। मणिपुर के सेनापति जिले से एक अच्छी खबर आई है। पिछले करीब एक महीने से बंधक बनाए गए 14 नागरिकों को चर्च और लोकल कम्युनिटी के दखल के बाद सुरक्षित रिहा कर दिया गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद अमेरिका ने दक्षिण ईरान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सेना ने भी दावा किया है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसी के साथ रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर प्रतिबंधों का 21वां नया पैकेज पेश किया है। इस नए प्रस्ताव में रूस के बैंकों, हथियारों बनाने वाली कंपनियों और क्रिप्टो ऑपरेटर्स को निशाना बनाया गया है। वहीं पश्चिम बैंक हिंसा पर 6 देशों का बड़ा फैसला। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने मिलकर वेस्ट बैंक इलाके के फिलिस्तीनियों पर हमला करने वाले और उनके नेटवर्क को पैसा पहुंचाने वाले लोगों पर नए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी के साथ COP31 समिट को ब्लू कॉप बनाने की मांग। दुनिया भर के 150 से ज्यादा बड़े लीडर्स और पर्यावरण एक्सपर्ट्स ने तुर्की और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों को एक ओपन लेटर लिखा है। इस साल नवंबर में होने वाली COP31 क्लाइमेट समिट में मांग की गई है कि समंदर को बचाने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए महासागरों को इस पूरी चर्चा के केंद्र में रखा जाए। वहीं जापान और मलेशिया के बीच अहम समझौता। टोक्यो में आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच एक बेहद सफल मीटिंग हुई। दोनों देशों ने सुरक्षा, इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का एक नया मजबूत वादा किया। इसी के साथ अमेरिका में इमिग्रेशन के लिए भारी बजट पास। अमेरिकी संसद ने बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि ICE को मजबूत करने के लिए $69.5 बिलियन का एक बहुत बड़ा बजट पैकेज पास किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डिफेंडिंग चैंपियन लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम अपने खिताब को बचाने के सफर की शुरुआत ग्रुप जे में अल्जीरिया के खिलाफ मैच से करेगी। इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हैरी केन की चुनौती। इसी वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम को ग्रुप के में कोलंबिया, कांगो और उज्बेकिस्तान के साथ रखा गया है। वहीं इंग्लैंड के स्टार हैरी केन की टीम ग्रुप एल में क्रोएशिया और पनामा जैसी टीमों से भिड़ेंगी। वहीं फीफा वर्ल्ड कप की गेमिंग की दुनिया में एंट्री। हुंडई मोटर और एपिक गेम्स ने हाथ मिलाया है। फुटबॉल फैंस के लिए अब फोर्टनाइट और रॉकेट लीग जैसे मशहूर वीडियो गेम्स में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के स्पेशल डिजिटल इवेंट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। वहीं महिला कुश्ती में विनेश फोगाट को बड़ी राहत। भारतीय खेल जगत

0: से जुड़ी एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की उस अपील को खारिज कर दिया जो विनेश फोगाट के ट्रायल्स में शामिल होने के खिलाफ थी। वहीं सोमाली रेफरी को अमेरिका का वीजा देने से इनकार। सोमालिया के मशहूर फुटबॉल रेफरी उमर अब्दुल कादिर अरतान को अमेरिकी सरकार ने वीजा देने से मना कर दिया है। इसी के साथ बेसबॉल मेडिसिन पर 2 दिनों की बड़ी वर्कशॉप शुरू। अमेरिका के बर्मिंगम में आज से 2 दिनों की बेसबॉल मेडिसिन वर्कशॉप शुरू हो रही है। इसमें दुनिया भर के टॉप डॉक्टर्स और फिजियो शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स

भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: जा रही हो।
1: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही
4: अनुज कमाना शुरू। कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
6: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
7: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
7: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
5: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
6: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
7: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
9: अच्छा, वो क्या?
8: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
8: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हाँ जी, तो ऐसी ऋषि कपूर दी दी बेस्ट फिल्म जो पहलियां पहला पसंद नहीं आई पर बाद विच बहुत ज्यादा पसंद आई है ना। तो तुसी दसो कि थानू इन विचों केड़ी सब तो ज्यादा पसंद है। फटाफट दे नाल छोड़ो रेडियो बिस्वानी वल सरो वन एम साडा फेसबुक पेज है जिहदे बिस्वानी एट बिस्वानी डॉट कॉम साथ ईमेल आई टी है जरिया जेड़ा भी अपनाना चाहते हैं क्यों तुसी अपना साडा गला पता जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। तो मैं तो हमेशा की तरह यही वादा करना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। कल करते मुलाकात। सत श्री अकाल।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: 너무
1: ना बदला मैं ना बदला वो ना बदला तू अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त ये वक्त है बदला पहले था कबूतर अब है ट्विटर पहले थी बुक अब है फेसबुक पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी यही सोचकर पिछला और अगला

0: 뭐가?
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: आया क्या?
3: आएगा।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: जा रही हो।
1: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्क, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: देसी घी मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से 99.9% प्योर मिल्क फैट से और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: तुम जीत गए।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर जीवन आधार की इस सफर में हमेशा की तरह आज भी श्रोताओं सताक्षी आपके साथ है। तो चलिए अपने मन की आंखों को खोलिए और अपने जीवन को देखने की कोशिश कीजिए। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन आधार रेडियो प्रस्वानी पर श्रद्धा और भक्ति से भरा ये सफर आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं और कुछ अनमोल विचारों को इस सफर में आपके साथ हम बांट रहे हैं। बीता कल और आने वाला कल, अक्सर इसी की चिंता में हम घुलते रहते हैं, इसी की चिंता में मन विचलित रहता है। लेकिन बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात का बखान खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। वो कहते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि जो होना है वही होगा और जो होता है वो अच्छा ही होता है। इसलिए जो आपके पास इस वक्त है, बस उसी का आनंद लीजिए, उसी का मजा लीजिए और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन के एक सफर को जानने की, समझने की खूबसूरत कोशिश जीवन आधार। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपके साथ कई खूबसूरत एहसासों को इस जीवन के हम आपके साथ बांट रहे हैं और आपको भी जीवन को समझकर या समझने में ये सफर जो है वो बहुत मजा दे रहा होगा, बहुत मदद कर रहा होगा। आइए एक और गीत के साथ अभी आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

दोस्तों, ये जीवन है और जीवन कई रहस्यों से भरा हुआ है। ये वही जीवन है जिसको जीने के लिए आप हमेशा परेशान तो रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए, इस जीवन में जीने से अधिक मरने के पल आने वाले हैं। और उन मरने वाले पलों में, यानी वो पल जो आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में आए, वो पल जिनमें आप टूटा हुआ महसूस करेंगे, आपके इमोशंस हर्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे लम्हे जिंदगी में आएंगे जो आपके लिए मरने के जैसे ही होने वाले हैं, और यही सत्य है। लेकिन उन पलों में भी, उन पलों को भी आपको जीना है, और ये भी सच है। आइए इसी सच के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए आपकी सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत सफर जो जिंदगी से भरा है और जिंदगी को ही आपको समझा रहा है। ये सफर है जीवन आधार का और इसी सफर में आप कुछ जीवन से जुड़ी खास बातों को, खास रहस्यों को हमारे साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और गीत के साथ आगे बढ़ेंगे, उसके साथ हम भी आपके साथ जीवन को और इसकी कहानी को समझेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए हमारे साथ।

अभिमान और अनुभव जीवन में ये दोनों ही बहुत महत्व रखते हैं। देखिए ना, अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं अकेला ही दुनिया में आया हूँ और अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन अनुभव कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी ना तो धूल की भी जरूरत होगी। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तब भी आपको चार कांधों की जरूरत होगी, आपको लोगों की जरूरत होगी। इसलिए कभी भी अभिमान मत कीजिए। अभिमान आपको हमेशा तोड़ता है, आपको हमेशा मिटाता है, तो वही अनुभव आपको जीना सिखाता है। आइए इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं अभी हमारे सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, और रेडियो प्रस्वानी पर अपने ही जीवन को जानने की आप मेरे साथ एक और कोशिश कर रहे हैं। एक और खूबसूरत से गीत के साथ अभी आगे बढ़ेंगे। जिंदगी से भरा ये गीत है, इसे सुनिएगा और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी। सताक्षी है आपके साथ।

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है ना श्रोताओं, उसको वैसी ही मूरत प्रभु की नजर आती है। तो अगर आपको भी देखकर कोई बुरा समझता है, आपको भी खोखला समझता है, तो ये उसकी अपनी भावना है। जब लोग भगवान को नहीं बख्शते तो हम इंसानों को क्या बख्शेंगे, ये सोचकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को भूल जाइए। जो हमें जिस नजर से देखना चाहता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो हमें उसी नजर से, उसी नजरिए से देखता है। और ये भी जीवन का एक अमिट सत्य है, और इसी सत्य के नाम है ये अगला गीत। सुनते रहिए जीवन आधार, आपकी सताक्षी है आपके साथ।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन के आधार का हमारा और आपका खास सफर जीवन आधार, जिसमें आज अपने ही जीवन को समझने की उसकी बागडोर को थामने की कोशिश थी हमारी। आशा करते हैं कि आपको ये सफर जरूर अच्छा लगा होगा। कल और जीवन से

नमस्कार ब्रिस्बेन, नमस्ते अदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैं हूं आप सभी की दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए चांदनी का सफर, और पूरी आशा करती हूं ये सफर आप सभी का हमेशा की तरह बेहतरीन ही गुजरे और आप सभी के लिए मैं कुछ अच्छी बातें ही लेकर आऊं। दोस्तों, आज की सुबह को बनाते हैं और भी ज्यादा खूबसूरत, पॉजिटिव और एनर्जेटिक चाय के साथ, कॉफी के साथ। जी हाँ, क्योंकि ये मॉर्निंग की जो चाय और कॉफी है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसके बिना तो काम चलने ही नहीं वाला। जी बिल्कुल, तो आइए जी इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं इस गीत के साथ। सो वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, तेजी से बढ़ते हैं आगे इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। तो दोस्तों, जिंदगी में हर सुबह एक नई किताब का नया पन्ना होता है। कल की गलतियों को आज की उम्मीदों से मत नापना। इसीलिए दोस्तों, जो गलती होगी उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश जारी रखना। तो आइए इसी के साथ कुछ ब्रिस्बेन की अपडेट्स जान लेते हैं। ब्रिस्बेन में इन दिनों काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और विंटर का मजा चल रहा है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो क्वींसलैंड की जो कई इलाके हैं उनमें ठंडी हवाएं और हल्की बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। अगर आप ऑफिस या फिर स्कूल के लिए निकल रहे हैं तो जैकेट जरूर साथ में रखिएगा। वहीं पर दोस्तों, ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ब्रिस्बेन रेसिडेंट सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशंस कर रहे हैं। पीक आवर्स में ट्रेन और फिर बस सर्विस जो है उन पर एक्स्ट्रा भीड़ देखने को मिल रही है। तो सावधान बरतिए और सेफ ड्राइव करें और सेफ जाइए। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे इन गीतों के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए अब कुछ भारत की खबरों पे नजर डालते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 18 जून के बीच फ्रांस और स्लोवाकिया की ऑफिशियल विजिट पर जाने वाले हैं, जहां पर कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स यानी कि काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स और डिप्लोमेटिक डिस्कशंस होने वाली है। तो जानेंगे ऐसे ही अपडेट कि आगे क्या हुआ और क्या नहीं, वो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हां जी मेरे प्यारे श्रोताओं और मेरे प्यारे क्रिकेट फैंस, आप सभी के लिए एक खुशखबरी आपके दोस्त जाननी लेकर आई है। जी हां, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जून में टेस्ट और ओडीआई सीरीज खेली जा रही है। जी बिल्कुल, और क्रिकेट लवर्स इस सीरीज पर काफी नजर बनाए हुए हैं, तो ऐसी ही नजर बना के रखना क्योंकि ऐसी ही जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रेसवाणी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, फुटबॉल और म्यूजिक फैंस के लिए एक्साइटिंग खबर है। मैंने सोचा सबको इतनी एक्साइटिंग खबर दे दी तो भाई फुटबॉल और म्यूजिक फैंस को क्यों नहीं। दोस्तों, 2026 फाइफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार ग्रैंड हाफ टाइम शो देखने को मिल सकता है, जिसमें कि ग्लोबल म्यूजिक स्टार्स परफॉर्म करेंगे। जी हाँ, वहीं पर गेमिंग लवर्स के लिए भी बड़ी न्यूज है भाई। निंटेंडो ने अपना अपकमिंग गेम्स और नेक्स्ट जनरेशन कंसोल अपडेट्स अनाउंस किए हैं। आप सभी बने रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रसवानी में, ऐसे ही अपडेट्स आप सभी को इस शो में मिलती रहेगी।

आप सभी ने सुना ये प्यारा सा ट्रैक। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है रेडियो ब्रिस्वानी में। प्रोग्राम चल रहा है चांदनी का सफर। तो दोस्तों चलिए एक बात आप सभी से शेयर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक मधुमक्खी यानी कि एक हनी बी जो है अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लगभग एक चम्मच का जो 12th पार्ट होता है यानी कि 12वां हिस्सा ही शहद बना पाती है। यानी कि हम जो रोज इतना शहद भर भर के खाते हैं ना, उसके पीछे हजारों मधुमक्खियों की मेहनत होती है। तो इसीलिए दोस्तों उनकी मेहनत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जरा भी शहद हमने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारी खूबसूरती के लिए भी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

जी क्या आपको याद है वो जमाना? हाँ जी, अपना 80s 90s का जमाना। जी हाँ, जब सुबह सुबह मम्मी हमें आवाज लगाती थी, उठो बेटा स्कूल का टाइम हो गया है, और हमारा रिप्लाई आता था, मम्मा 5 मिनट और सोने दीजिए ना। पूरी 5 मिनट के लिए हमें नेगोशिएशन करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल के बच्चों के पास तो भाई स्मार्टफोन है, फटाफट से अलार्म लगा देते हैं और 5 मिनट छट से हो जाता है और अपना म्यूजिक बज जाता है और बच्चे उठ जाते हैं। लेकिन भाई हमारे जमाने पर हमारा अलार्म सिस्टम तो हमारी मम्मी ही थी। क्यों जी, सहमत हो ना मेरी बात से? तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रैक के साथ, ओनली ऑन रेडियो ब्रह्मानी।

अलावा क्या गीत है। सुबह की चाय हो, ब्रिस्बेन की ठंडी हवा हो और रेडियो ब्रिस्बेन का साथ हो, हां जी आपकी अपनी दोस्त चांदनी का भी, फिर दिन खराब होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। क्यों जी, सहमत हो? तो चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है एक प्यारे से गाने का, और अपनी चाय की चुस्कियों के साथ एंजॉय कीजिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट ही सबसे खूबसूरत एक्सेसरी है। जी बिल्कुल, मैं हूँ आपकी दोस्त चांदनी और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। स्टे ट्यून्ड। और जी आप दीजिए मुझे इजाजत और सुनते रहिए, बने रहिए हमेशा इस स्माइल के साथ, रेडियो ब्रिस्बेन सुनते रहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोग्राम आते हैं और अपडेट्स आपको मिलती ही रहती है बैक टू बैक। अभी के लिए दीजिए इजाजत और अपने फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। डॉट लॉयर्स डॉट कॉम। वी प्राइड आवरसेल्व्स इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस।

एंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर।

क्लासिकल हिट्स एंड वेट रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूं, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा,
2: यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छे हैं। और अगर नहीं अच्छे, अगर थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एनर्जी से भरा हुआ, गाता गुनगुनाता हुआ इट हैपेंस लेकर सताक्षी आपके लिए हाजिर हो गई है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करूंगी और बहुत सारे मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जो आपको सुनवाऊंगी। लेकिन लेकिन ये सब सुनने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा ना। हाँ, तो भाई जिन्होंने अभी तक रेडियो सेट्स नहीं खोले और वो दूसरों के घरों से मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने रेडियो सेट्स भी ऑन कर लीजिए। अपने मोबाइल फोन्स, अपने कंप्यूटर्स, जहां पर भी आप मुझे सुनते हैं, प्लीज ऑन कर लीजिए, ताकि आप इट हैपेंस को अपने अपने घरों में अपने साथ एंजॉय कर पाए, है ना। और बहुत खूबसूरत गाने जो है वो आप यहाँ पर सुनने वाले हैं, लेकिन अगर वो दूसरों की विंडोज से आएंगे, आपके कानों में दूर से पड़ेंगे, तो मजा नहीं आएगा ना। इसलिए जल्दी से खुद के घर में भी शुरू कीजिए इट हैपेंस, और आज के गानों को गुनगुनाना भी तो है, तो जल्दी आप अपने कामों को फिनिश करते चलिए, ताकि दिन जो है वो अच्छा बीते, खूबसूरत बीते, मिसमैनेजमेंट ना फैलने पाए, है ना। क्योंकि एक बार रूटीन अगर बिगड़ा तो फिर पूरे दिन का रूटीन चेंज हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, आप काम करते रहिए, मैं आपको इंगेज रखूंगी अच्छे अच्छे गानों के साथ भी, आपको एंटरटेन करती रहूंगी, और बातें तो होती है लाजवाब हमारी। तो चलिए, देर किस बात की है, इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी 1701 AM, आप है सताक्षी के साथ और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

गुड मॉर्निंग अजी, एक बार फिर से आपको रेडियो प्रसारणी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। वेल, बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, गाने भी होंगे, बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन हाँ हाँ, आज का दिन जिनके लिए खास है उन्हें हम कैसे भूल जाए। तो आपका है हैप्पी बर्थडे, तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड वी विश कि आप जिंदगी की हर खुशी पाएं, हर पल गाते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए बिताएं। जिनकी आज है शादी की सालगिरह, उनके लिए तो दिन और भी खास है। आपको पता है, मेरे हिसाब से जब आपकी शादी होती है ना, तो आपका नया जन्म होता है। सब कुछ जिंदगी में नया होता है, आप जिंदगी की एक नई समझ रखना शुरू करते हैं, एक नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं जो उस दिन के पहले आपने शायद पहले कभी नहीं किया होता है, राइट? सो मेरे लिए बहुत ऐसा वाला होता है कि यार ये नया जन्म है इंसान का। तो आपका भी आज नया जन्म हुआ था, तो हैप्पी बर्थडे भी हुआ आपका। वेल, आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। ये साथ यूं ही बनाए रखिएगा और इस जिंदगी में एक दूसरे का हाथ थामे यूं ही साथ साथ चलते रहिएगा। और जिनके लिए भी स्पेशल है, खास है आज का दिन, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत सारी विशेज हैं हमारी कि आप सबका दिन, आप सबका सबका सबका

0: Made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royalindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम पर। जी हाँ, रेडियो ब्रिस्वानी पर आज फिर से आपके साथ हूँ कुछ बहुत ही गहरी और प्यारी बातों के साथ। वैसे केयरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम प्यार की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरों में सिर्फ आई लव यू कहना, साथ में घूमना फिरना या एक दूसरे को गिफ्ट देना आता है, होता है ना ऐसा? लेकिन केयरिंग इससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी एहसास है। जी हाँ, केयरिंग का मतलब है कि सामने वाले की छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखें, उसके बिना बोले उसकी जरूरतों को समझ जाएं और जब वो थका हो या परेशान हो तो बिना कहे उसका साथ देना शुरू कर दें। तो केयरिंग जो है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी केयरिंग को चलिए आगे लेकर चलते हैं, मतलब हम गानों के साथ, क्योंकि हम आपकी परवाह करते हैं और आप निकल पड़िए कुछ बातों के साथ, उनकी बातें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दिखाइए कि आपको उनकी कितनी परवाह है। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM।

हर दिल का अपना एक पैटर्न होता है। हर इंसान लव और रिलेशनशिप को एक ही तरह से एक्सपीरियंस नहीं करता है। कुछ लोग रिलेशनशिप्स में सिक्योर फील करते हैं, उन्हें ट्रस्ट करना आसान लगता है, उन्हें लगता है कि अगर कोई उनसे केयर करता है या उनकी परवाह करता है तो वो केयर जेन्युइन है। लेकिन कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप इतने सिंपल नहीं होते हैं। वो किसी से अटैच तो हो जाते हैं, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक फियर भी होता है। कभी उन्हें लगता है कि वो पर्सन उन्हें छोड़ देगा, कभी उन्हें लगता है कि वो पर्सन जेन्युइन नहीं है, कभी उन्हें लगता है कि शायद वो खुद ही किसी पर फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कई बार रिश्तों को थोड़ा सा गहरा कर देती हैं और कई बार रिश्तों की कमज़ोर कड़ी बनने की भी जो है वो वजह बन जाती है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप से पहले गुजर चुके हैं या कोई एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में रहा है जिसने आपको ट्रस्ट नहीं किया या जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, अगला इंसान जो इस वक्त आपकी जिंदगी में है, आपका दोस्त, आपका पार्टनर, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ कोई भी, आप उसे पहले की तरह मत सोचिए, मतलब पहले वाले इंसान से कंपेयर मत कीजिए ताकि आप एक बेटर रिलेशनशिप जी सके, राइट। आइए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: पर आप सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। दोस्तों, बहुत सारी बातें हम और आप आगे करेंगे, लेकिन गानों का सिलसिला जो है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए इट हैपेंस में आगे बढ़ते हैं गानों की हैट्रिक के साथ, और ये पहला ट्रैक एंजॉय करते हैं।

गानों की हैट्रिक इस वक्त आप सुन रहे हैं दोस्तों सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। तीन बैक टू बैक ट्रैक्स जो आज के दिन को खूबसूरत कर रहे हैं क्योंकि इन गानों को आप गुनगुना रहे हैं, वो भी सताक्षी के बिना आपको डिस्टर्ब किए। तो चलिए इस अगले ट्रैक को भी जल्दी से सुनवाऊंगी और कम बोलूंगी ताकि आप इसे भी इंजॉय करें। सुनते रहिए ठाकुर सताक्षी के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रसवानी पर।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रसवानी पर गानों की हैट्रिक। जी हाँ, यही सेगमेंट हमारा इट हैपेंस में इस वक्त चल रहा है, जहाँ तीन बैक टू बैक ट्रैक्स आप सुनते हैं। दो गाने हम ऑलरेडी सुन चुके हैं और तीसरा गाना जो है वो आपको, अगर आपने अभी तक इसे नहीं गाया है, मतलब अभी तक के गानों को नहीं गाया है, तो इसे आप जरूर गुनगुनाने वाले हैं। कौन सा ट्रैक है जरा सुनिए। सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इस ट्रैक के बाद। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी।

अच्छा आप इसे एंजॉय करें आप सताक्षी के साथ रही जो ब्रिस्वानी 1701 AM। वैसे घर ये शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एक सुकून, एक सेफ प्लेस, एक ऐसी प्लेस जहां पर जाने के बाद फिर कुछ और याद ना रहे। वैसे बात भी सही है कि घर ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले मन में सुकून आना चाहिए। एक ऐसी जगह जहां इंसान दुनिया से हार कर लौट भी आए तो उसे सहारा मिले। लेकिन हर किसी के लिए घर हमेशा सुकून नहीं होता है। कई लोगों के लिए घर ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन जाता है भाई, और इसी वॉर का, इसी युद्ध प्लेस का नाम है घरेलू वॉर्स, घरेलू कलेश या फिर घर पर होने वाले आर्ग्यूमेंट्स। जी हाँ, और ये घरेलू कलह जो है ये अचानक नहीं होती है, ये किसी एक दिन की लड़ाई भी नहीं होती है, ये धीरे धीरे पनपती है, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से होकर जिंदगी की बड़ी थकान बन जाती है। और वो सबसे दर्दनाक बात तब बन जाती है जब कोई बाहर का दुश्मन आपसे घरेलू कलह तो करता नहीं है, वहां जो भी कुछ हो रहा है वो सब आपके अपने कर रहे हैं। एक इंसान जब बाहर से थक हार के आता है और उसे घर पे सुकून ना मिले तो सोचिए कैसा लगेगा, है ना। आइए फिलहाल और बातों के साथ आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन एक अगला ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

जी इट हैपेंस, आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्फानी पर, और इट हैपेंस में आज आपके साथ बात हो रही है सुबह आप ही की जिंदगी पर। वैसे आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल क्या है, आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल है लाइफ में करना क्या है। और सबसे फनी बात ये है कि ये सवाल सबके पास है पर आंसर किसी के भी पास नहीं है। स्कूल खत्म होता है, कॉलेज आता है, लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं अब क्या बनना है, कहाँ जाना है, फ्यूचर क्या है, क्या करना है, और हम खुद ही ये सोच रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि भाई मुझे करना क्या है। सबको आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं पर आप खुद से ये क्लैरिटी ही नहीं लिए हुए हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आप खुद दूसरों को देखते हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में है कि करना क्या है तो आप थोड़ा सा ठहरिए और मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, पैसा आपको किसी भी फील्ड में काम करने के बाद आज की डेट में मिलने वाला है, और आज की डेट में जब सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, तो पैसा कमाने के सोर्सेज भी बहुत सारे हैं। लेकिन वो काम जो आपका पैशन बन जाए उसे करना आपको लाइफ में सिर्फ पैसा ही नहीं देगा, आपको लाइफ में बहुत आगे भी लेकर जाएगा। इसलिए दोस्तों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा इस बात पर भी अपने करियर को चूज करते समय ध्यान दीजिए कि आपको किस काम को करने में मजा आता है और उसे ही अपना करियर बना लीजिए। आइए फिलहाल एक ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्फानी। आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।